0: अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। अब
1: वाह,
0: तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर
1: क्या बात है।
0: रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, रुखसत के वक्त तुमने जो

मर जाना चंगा है मर मर जीण तो, डसके वाले मुकद्दर नू ना रोक हुण पीण तो। बड़ी है।

अस चले मौत वी औन नु तू शगन मना दे। अस चले मौत वी औन नु तू शगन मना दे। सिर ते

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास कर

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: दशमेश पिता चला गया। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, तन तन साहेबजादा अजीत सिंह जी, तन तन साहेबजादा जुझार सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: डॉक्टर देविंदर कौर जी तो बाद हुण मैं सदा देण जा रहा हां बरनाला जिले दी शायरा किरणजीत कौर जी। किरणजीत कौर जी इस बार जिहड़ी कविता लैके हाजिर हो रहे ने उस कविता दा सरलेख है फौज किसानां दी। किरणजीत कौर जी तुहाडा दुआबा रेडियो।

0: करो तुसा सखाई, नाम जपो किरत करो तुसा सखाई, हथो जांदी दीदी सानू साडी कमाई। असी शांत मई हां मल्लो मल्ली करदा है तकरार, असी किरती बाबा साडी बैरी बनी सरकार, असी किरती बाबा साडी बैरी बनी सरकार। मावां साडियां तुरपियां, मावां साडियां तुरपियां, चक के झंडे सिदक उना दे नू इक अल्लड़ पंडे। कईयां रंबे दातियां दी, कईयां रंबे दातियां दी घटन लगी चमकार, असी किरती बाबा साडी बैरी बनी सरकार, असी किरती गुरु नानक। समत बख्श दे हुक्मरान नू, समत बख्श दे हुक्मरान नू, किरणजीत ना वंगारे साडे सन्मान नू, किरणजीत ना वंगारे साडे सन्मान नू। असी मुड़िए घरां नू रहे सलामत दिल्ली दा दरबार, असी किरती बाबा साडी बैरी बनी सरकार, असी किरती बाबा साडी बैरी बनी सरकार, असी किरती धन गुरु नानक।
1: जीत कौर तो बाद हुण मैं सदा देने जा रहा हां जिना शहीद भगत सिंह नगर दे शायर जगदीप हीर जी नू। जगदीप हीर जी अपनी जड़ी रचना लेके हाजिर हो रहे ने, ओ उना दी एक गजल है। जगदीप हीर जी साडी कामे फल दे विच पहला भी आउंदे रहे ने, इस बार फिर असी उना नू सदा दिता ते उना ने सदा कबूल करके अपनी रचना लेके हाजिर हो रहे ने। जगदीप हीर जी थोड़ा निघा स्वागत है।
2: दुआबा रेडियो ते पेशकार हरवंशियो साहब जी दा मैं तय दिलो धन्नवादी हां जिन्हां ने हफ्तावारी का महफिल च मैनूं बुला के मैनूं बोलण दा मौका दिता। मैं जगदीप सिंह हीर पिंड मजारा नौवाद तों जिला शहीद भगत सिंह नगर दे आप जी दे सन्मुख पंजवीं बार इस प्रोग्राम च होया हां जी। मैं एक रचना लिखी सी जो आप जी दे सन्मुख है। अर्ज है कि जमीरों बिकया इंसान तेरे शहर दा, जमीरों बिकया इंसान तेरे शहर दा, हर एक बंदा बेईमान तेरे शहर दा। जमीरों बिकया इंसान तेरे शहर दा, हर एक बंदा बेईमान तेरे शहर दा, बेईमानी रब खवाउंदी चार चफेरे, बेईमानी रब खवाउंदी चार चफेरे, विसारिया लोकां कुरान तेरे शहर दा। जिथे मुठ्ठी भर खुशियां माणियां सी कदे, जिथे मुठ्ठी भर खुशियां माणियां सी कदे, किवें भुल्ला ओ एहसान तेरे शहर दा। मजहबी दंगियां बर्बाद कीते रहण बसेरे, मजहबी दंगियां बर्बाद कीते रहण बसेरे, हर गली मुहल्ला वीरान तेरे शहर दा। हाहाकार चीख पुकार दा शोर है सब पासे, हाहाकार चीख पुकार दा छोर है सब पासे, मैथों होवे ना हाल बयान तेरे शहर दा। साक गवाए गवाया सिरनामा अपना, साक गवाए गवाया सिरनामा अपना, हां मुसाफिर मैं परेशान तेरे शहर दा। हीर भटक रहा है अज ओ दर बदर, हीर भटक रहा है अज ओ दर बदर, जो रहा सी कदे सुल्तान तेरे शहर दा, जो रहा सी कदे सुल्तान तेरे शहर दा। धन्नवाद पेशकार हरवंशियो साहब जी दा ते दुआबा रेडियो दे सारे सत्कारयोग स्रोतियां दा जी, बहुत बहुत धन्नवाद जी।
1: हीर जी तों बाद हुण मैं सदा देण जा रहा लुधियाणा दी शायरा नवगीत कौर जी नूं। नवगीत कौर जी इस वार साडी कामे फल दे विच जिहड़ी रचना लै के हाजिर हो रहे ने, ओह साडे इस वेले चल रहे किसानी संघर्ष नूं समर्पित है। नवगीत कौर जी थोड़ा दुआबा रेडियो दी हफ्तावारी कामे फल कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है जी। आया नूं
3: सत श्री अकाल दोस्तों, पेश ने कुछ सत्रां जो किसानी संघर्ष नूं समर्पित ने। तू कदे सानू कहंदी अत्तवादी दिल्ली ए, तू कदे सानू कहंदी अत्तवादी दिल्ली ए, कदे सानू कहें वखवादी दिल्ली ए, मार इतिहास वल झाती दिल्ली ए, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਾਹੀ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ।

काम आना किसी के है एक बंदगी, एक बार ही मिलती है ये जिंदगी। काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो भी हंसा था रे, रोने वालों को जो भी हंसाता रहे, असली है।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने,

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: तो ये जीवन भला है ये किस काम का।
1: जी दी रचना तो बाद मैं फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर है सुखविंदर कौर जी सदा दिन जा रहा वो आन ते अपनी रचना लैके हाजिर हो। सुखविंदर कौर जी इस बार साड़े कवि दरबार के जदों आ रहे ने वो बठिंडा दे शायर कुलदीप सिंह बंगी जी की एक गजल लैके हाजिर हो रहे ने। सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो के हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है।
2: दोस्तों मैं सुखविंदर कौर फरीदकोट आप जी की नज़र मालवे की शान बठिंडे जिले का माण कुलदीप सिंह बंगी जो पेशे वजो एक अध्यापक ने उन्होंने लिखी हुई गज़ल आप जी सामने पेश कर जा रही हूँ। एक वारी जे झूठा ही तू दे जांदा तेरे वास कदे

सफर आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कह

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कहे।

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

लगती सही। कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना। कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना।